0: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलुङ समाचारको सहयात्री।

ぐらいにさ、अन्य सेवा सुविधा लागत समय सम्पूर्ण जानकारी को लागी विष्णु अधिकारीलाई सम्झनु होला। सम्पर्क नम्बर 9841870793 9841870793 साधो बाटो चरीकोट दोलाखा।

प्रत्येक सातक शुक्रबार राति 8 बजे र पुनः प्रसारण आइतबार अपराह्न 4 बजेको समाचार पछि कार्यक्रम गीती कथा। सुन्न नभुल्नुहोला रात्रिकालीन साहित्यिक प्रस्तुति कार्यक्रम गीती कथा।

लिखे करो प्रयाव नो लतापाई जाता होई ना धूम लेरा आपको चानो डाटे मरे जानो जाता होई ना धूम लेखको टुनी टुनी मुने मुने बदन खाने कामिलो दुधको तरी न त राम्रो

0: आजुरा को बेठी सावनी आइरे चुमा पानी ओरी ओ राजा रानी धानी आई उन संसार की निराईले यो जीवन ऐसा ईशु क्या कथा ना यो घर को पीराईले ओरी ओ उकाली जन को चावले ते ढूंगो गलाऊं दा गल दाई ना गरा को मंचे ना बीजे सामन दानाई फल दाई ना
1: यो कालो बंद वेला गाऊं ना
2: शुरू करनी वेला ची की गाई
1: सदा शुरू में से बयाना को झूल के गाऊं सीता को तोपनी बात इमरे बैठी खावने आई रे चुम्मा पनी
0: हरे आवानों का चौई पाता पाके को खुर्सानी बागमती ताई अथमाए समझाने बिरसानी ओरियो शिरा मायरा सोना को सेली छाती मायरा उठाक ग्यांपा मायर तो हवल दरवाजे समल को साइनों पां ओरियो
1: पहला तो चोपड़ गाँव थे आज अपने गाँव थे अब किन्हाने उल्मुल्मा अलविदा

दसैं रत्यावर मत आफै आउला तिजमाले न पठाइदेऊ फुलफुलो जाइले मेरो माइती भाइले तिजमा लिन

मकैलाय कानी माई गाये पाने सके ना माइले बेरे सानो फुलफुलो तोरी एरा ना बहनी छोरी सके ना माइले बेरे सानो पारी बड़ा को तो मान्छे आयो के ताई लायो माल माताओ यारे रामा ढल्क्यो यो जमान के ताई लायो माल माताओ अहिलेको दशैं माटि गाउँमा बसाई गाउँ दशैं कलकत्ता कलिलो गाबा सुनी देवै बाबा गाउँ दशैं कलकत्ता भोरको वर्षा पानी नपर्नाले उमारैमा

सारी छया हुन राजा नमस्कार सारे दौलत ले परिपूर्ण होस पवन जाई नई परेका घरे मंडा खुन सवाले दुर्योधन समान कर्णई समान दानमा तागत श्री बलराम कई सरी होस सद्वात कई काममा राजा धर्म कुमार कैसरी हो श्री ब्रह्म ज्ञान अनि विदुर कैसरी ज्ञान हव शिशु जन्म मानुन बढाले पनि कृति उज्ज्वल होस् सुत